हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? देखिएगा स्टूडियो की घड़ी में 5:29:25:26:27 हुए हैं और कंसोल की घड़ी में 5:29:30:31:32 हुए हैं और कंप्यूटर नंबर 1 सुनाता हूँ।